Gorkha Radio. Gorkha Radio. BFB's Gorkha Radio कार्यक्रम में लिचाऊ हम यो समय दिवा कुसिली को second hour मा राबो बनी किचन मा तबले सुन्ना सकनु ने सा कार्यक्रम को यो second hour मा रखनी ने सुधाबिको माझमा W2 Supreme Rai रेसिगरी पद्मा राय वहाँ संगरे को कुरकानी episode 8 रे को सा युक्ताय को साथ मा part 1 से उन्हें सा 28 मिनट ज़्यादा र part 2 से 3 बजे को लगी 13 मिनट बाकी होता उन्हें सा रेस को साथ में अपने कार्यक्रम में हम योगरी बढ़ने नहीं सा उनसे तथा भी को मार्च में और को एक अमीर गीत रखने क्रम आयने सा के को सा सुना कांची रहे को सा सज्जन राजवेदी को आवाज़ में एंजॉय करने होला

0: try again later.
1: BFBS Gorkha Radio. Gorkha Radio.
2: BFBS Gorkha Radio कार्यक्रम में ले आमी चांसरता यो समय दिवा कुसली को आखरी यानी कि तीसरा घंटा मा रातावे संबंधाले फेरी पिन स्वागत सामोसे ने कतरफ बाटा चार बजे को लागे बबने 25 मिनट बाकी रहेगा साथ रविशिव ने अपकमिंग इवेंट्स को बारे में आप नहीं दाबिको माजमा जानकारी रो राखी राय को सूरा अब अपने नेक्स्ट इवेंट होना कह रही को सा यूसी लाइव इन यूके उन्हें सा सैटरडे को दिन 10th ऑफ अक्टूबर वेनिचे रहे को सा पॉपली फील्ड सेंटर संपूर्ण बेजिंग स्ट्रोक बासी को लागी सी रहे को सा यो विशेष कलाकार को इस समय में प्रस्तुति रहने सा लाइव परफॉर्मेंस र लिमिटेड सीट्स हरु सा अर्ली बुक करना होला 20 पाउंड्स टिकट को लागी र इसे मा कुनै क्वेरीज छन् भने कल गर्न होला 0746978693 मा सी कल गरेर क्वेरीज हरु पक्कै पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ रवनि कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईँको माझमा अर्को एउटा मिठो गीत राख्ने क्रम आइसकेको छ श्रोता यो समयमा अहिलेको लागि भने सुजन चापकाईको आवाजमा छ फुलथुङ्गी रानी एन्जोय गर्नुहोला